नेपालीहरूको महान पर्व बड़ा दशैं शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाई दिदीबहिनी तथा देश विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। वडा अध्यक्ष सुदीप श्रेष्ठ, चौतारा सागाचो घडी नगरपालिका, वडा नम्बर 2, परिवार सिन्धुपाल्चोक।